ऑनलाइन कनेक्शन, जी हाँ, ऑनलाइन कनेक्शन पे बात कर ले भाई। आजकल के रिश्ते मुझे लग रहा है, पहले तो जब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की तो ऑनलाइन रिश्ते ढूंढे जाते थे, है ना। फैमिलीज भाई प्रोफाइल बनाती थी शादी के लिए, और उसके लिए भाई प्रोफाइल बनाने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को सर्च करते थे, इजी हो जाता था। अभी तो मतलब ऑनलाइन प्यार भी शुरू हो गया है, ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन दिल का कनेक्शन शुरू हो गया है। देखा जाए तो ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन प्यार में बड़ी सारी चीज़ें लोगों को आसान लगती हैं। भाई देखिए, एक तो गर्लफ्रेंड को रोज़ रोज़ गिफ्ट नहीं देना है ना। आप कहाँ थे, क्यों थे, किसके साथ थे, आपको ये किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। सो इस बेनिफिट के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि लोग इसलिए भी ऑनलाइन प्यार की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, भाई अगर ब्रेकअप करना हो तो भी उतने झंझट नहीं होते, है ना। भाई कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते, बहुत है तो उठा के ब्लॉक कर दिया बंदे को, और बस बात खत्म, रिश्ता खत्म, दोनों कहाँ गए पता भी नहीं चलता है। तो भाई देखिए, इस तरह के रिश्ते जो है वो बेशक आपको इजी लगते हो, लेकिन ये जेन्युइन नहीं होते हैं, है ना। अगर आप इन रिश्तों के साथ लॉन्ग टर्म में रहने की सोच रहे हैं, और कभी कभी तो देखिए साइबर क्राइम भी ऐसे रिश्तों से बढ़ता है, तो अगर आप इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय तक ये रिश्ता बना ले जाएंगे, तो भाई आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत लंबे और टिकाऊ नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए ध्यान रखिए इस बात का और ख्याल रखिए अपना। फिलहाल प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आपके साथ है सताक्षी।

एक्सेप्टेंस, आहा, एक्सेप्टेंस जो है ये एक ऐसा वर्ड है कि मुझे लगता है कि मुझे बार बार इस पर बात करनी चाहिए। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में मुश्किल जो चीज है वो है चीजों को एक्सेप्ट करना। कई बार मैं सुनती हूँ कि यार पहले रिश्ता बड़ा अच्छा था, अब ये रिश्ता खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले की चीजों को, उसकी खामियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और वैसे देखा जाए तो एक्सेप्ट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अक्सर जब एक्सेप्टेंस की बात आती है और कुछ लोग जो कर लेते हैं, लोग कहते हैं इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं भाई, एक्सेप्ट जो है वो बहुत मजबूत इंसान कर पाता है। किसी की गलतियों को या किसी की खामियों को एक्सेप्ट करके उसके साथ उस रिश्ते में रहना, उस दोस्ती में रहना या उस घर में रहना, यह आसान नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप अब हर सवाल का जवाब ढूंढने की जिद नहीं करते। आप ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, उन्हें जैसा है रहना है वो वैसी ही रहने वाली हैं। और ये रियलाइजेशन शुरुआत में आपको खालीपन लग सकता है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक शांति की, जिसके साथ आप खुश भी रहते हैं और जिसके साथ आप अपने रिश्ते को भी बेहतर बना पाते हैं। आपको लगता है कि यार अब मैंने जितना देना था इसमें दे लिया है ना, आप उस एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि भाई जितना करना था अब हम कर चुके। आप अगर ये रिश्ता नहीं चल पाता है या ये काम नहीं हो पाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस ये जो एक्सेप्टेंस है कि भाई अब इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे या ये चीज़ जो है ये जैसी है वो वैसी रहेगी, ये आपको बहुत शांत कर देता है। और उसी शांति के नाम ये अगला ट्रैक प्ले कर रही हूँ। इसे भी इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ इंजॉय करते रहिए। इट हैपन्स सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कहते हैं कि ऑटोमेटिक एफर्ट्स डालने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जब एक रिश्ता आपकी आदत बन जाता है तो ऑटोमेटिक एफर्ट अपने आप हो जाते हैं। और ये ऑटोमेटिक एफर्ट जो है ये आपको कई बार दर्द भी देता है, पेन भी देता है, मुश्किल में भी डाल देता है। कैसे? देखिए, आप उस बंदे से रोज बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आप करते आए हैं। आप सॉरी बोलते हैं क्योंकि बहस के बाद सॉरी जनरली आप ही बोलते हैं। आप साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि अलग होना ये इमेजिन करना भी आपको डरा देता है। लेकिन आप कभी खुद से ये नहीं पूछते कि उस रिश्ते में रहकर, उस इंसान के साथ रहकर आप खुश भी हैं या नहीं। और यही वो स्टेज होती है जहां इंसान अपनी खुशी को कह देता है बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अब आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते ताकि आप हर्ट ना हो, आप ज्यादा फील नहीं करते ताकि आपको टूटना ना पड़े, और आप अपने आप को इमोशनली न्यूट्रल रखना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है आपके एक ऐसे फेज में जाने की जो आपके लिए नेगेटिव है। यार देखिए, किसी भी रिश्ते में जब आप जुड़ते हैं तो आप बेशक उसमें एक्सपेक्टेशंस ना डालें, लेकिन आप इसलिए तो नहीं जुड़ते कि आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं या आप न्यूट्रल हो जाएं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें, इसलिए नहीं जुड़ते, है ना? तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या उस बंदे के साथ होना या अपनी दिल की बात कहना, अगर आप उस रिश्ते में हैं तो ये गलत नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप भले ही उस रिश्ते में रहें लेकिन आप अंदर से खत्म होते जाते हैं। सोचिए मेरी बात को, और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

इट हैपेंस जी हाँ, इसी सफर को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 पर। आजकल की जनरेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है ब्रेकअप। फेवरेट टॉपिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बड़ा आसान लगने लगा है भाई लोगों को। ब्लॉक किया, बात खत्म। और ब्लॉक अनब्लॉक का तो ऐसा खेल चलता है जिसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार लोग कैसे ही करते हैं। हाँ, और ब्रेकअप आपकी बात अगर करूँ, जो कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है फिलहाल आज, तो ब्रेकअप की बात करूँ तो कुछ ब्रेकअप ना दोस्तों शोर नहीं मचाते, वो बार बार ये अनब्लॉक और ब्लॉक का खेल नहीं खेलते, वो बहुत शांति से अपना एक मुकाम पा लेते हैं, यानी कि ब्रेकअप बहुत शांति से हो जाता है, ना कोई बहस होती है और ना ही कोई अलविदा या गुड बाय होता है। ये बस धीरे धीरे ऐसे रिश्ते खामोश हो जाते हैं, इतने खामोश कि सामने वाला ये तक नहीं समझ पाता कि रिश्ता खत्म हो रहा है, मुझे इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में यही सबसे आम और सबसे ज्यादा मुझे लगता है पेनफुल ब्रेकअप है, बिना बोले हुआ ब्रेकअप। इस तरह के ब्रेकअप में कोई ये नहीं कहता कि अब हम साथ नहीं है, बस बातें कम होने लगती हैं, पहले जवाब देर से आते हैं, फिर छोटे जवाब आते हैं, और फिर सिर्फ सीन करके छोड़ दिया जाता है। आप सोचते हैं कि शायद सामने वाला थका हुआ है, शायद हालात ठीक नहीं है। आप हर बार उसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको सिखाया भी यही गया है कि प्यार में पेशेंस होता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि ये पेशेंस जो है ये वो तब भी आप बनाए हुए हैं जब वो रिश्ता ही खत्म हो चुका है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ख्याल करिए और उस रिश्ते में एफर्ट्स डालना, मैसेजेस का इंतजार करना बंद कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद।

रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। जी हाँ, तो कहते हैं कि आज प्यार मैच्योर हो गया है, इसलिए हर वक्त बात करना जरूरी नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैच्योरिटी का मतलब लापरवाही नहीं होता है भाई। मैच्योर प्यार में भी हालचाल पूछा जाता है, थकान महसूस की जाती है और बिना कहे भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। जहाँ बिजी हो के पीछे केयर छुपी होती है, वहाँ बात कम होने पर भी सुकून रहता है। जहाँ केयर ना हो वहाँ पर हर खामोशी भी चुभने लगती है। बिजी हूँ अक्सर बोला जाता है जब इंसान बातचीत से बचना चाहता है, सवालों से, जिम्मेदारी से या उस सच्चाई से जो सामने वाले को तकलीफ पहुँचा सकती है, उसे दुख दे सकती है। चुप रहना जरा आसान लगता है क्योंकि चुप्पी में जवाबदेही नहीं होती, इस चुप्पी में रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। तो बिजी हूँ अगर बार बार आप सुन रहे हैं तो भाई ये बात सही नहीं है कि सामने वाला वाकई बिजी है। भाई ठीक है कि 24 घंटे प्यार की बात नहीं की जा सकती, लेकिन हर वक्त बिजी हूँ भी नहीं कहा जा सकता। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए इसी बात पर, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

सो भाई ये था इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ। आज हमने बहुत सारी बातें शेयर की एक दूसरे के साथ, बहुत सारे किस्से और बहुत सादा जिंदगी को समझने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी जो है ये पूरी तरह से कभी तक किसी को समझ में आ नहीं पाई है, लेकिन उसके बाद भी इसे समझने की कोशिश जो है वो जरूर जारी रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से कुछ खास बातों और जज्बातों के साथ हमारे इसी इट हैपेंस के सफर में। अब आज के सफर से सताक्षी लेगी इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड इज ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan
13: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसीं बने होए जी तुहाडे अपने चाहीते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 AM ते जी आरचे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत सोहणा जवड़ा शुरू हो चुक्या जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल असीं इन्हां गल्लां नूं पंजाबी गीतां दा तड़का जरूर लगाउणा हैगा। तुसीं की कहना है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो सोनी 101 AM साडा फेसबुक पेज है जी, briswani@briswani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओ अपना लो, पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर करो। तां इंज करो, फटाफट दे नाल अपना फोन चुको ते सानू सुनेहे भेजने शुरू करो, नालों नाल अपनियां फरमाइशां भी रखो ते गीत केड़े सुनना चाहुंदे हो वी दसो, है ना। तां जुड़ना शुरू करो, मैं हुणे वापस आउंदी हां। उहनां समां दा सोहणे जिहे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 AM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मां दो तरह नाल इतिहास रचदियां ने। एक ओ जो रिलीज दे पहले हफ्ते विच करोड़ां दी कमाई कर जांदियां हैगियां ने अते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने। दूसरियां ओ जो थिएटर विच भावें चंगा परफॉर्मेंस ना देण पर दर्शकां दे ज़हन विच ना सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने, समझ गए तुसीं ना कि मैं ऋषि कपूर दी गल करन वाली आ। जी हां, ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर सीगे जिन्हां ने 5 दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर फिल्मां बॉबी वर्गियां बॉबी विच लीड हीरो दे तौर ते शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने ना अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फार्मूला फिल्मां दे पिछे नहीं भज्जे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्मग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल ने जो रिलीज दे समय बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गया पर अज जो फिल्मां हर सिनेमा लवर दे बेस्ट लिस्ट विच जरूर देखिया जांदियां है। दसन लग्या उन्ना ही फिल्मां बारे विच जिन्हां ने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट विच फ्लॉप करार दिते जाण दे बावजूद ना बॉलीवुड विच सब तो ज्यादा उन्हां नूं पसंद किया जा रहा। दस दी एक एक करके पहला सुनो एक गीत।
1: Show mercy on it.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है. मुंडा संधुआ दा.

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.01 ते चर्चे संदेश अलग दिन नाल तुसी बने हुए हो। देखो जादवी बॉलीवुड की सब तो वड्डी अते बहुत वड्डी फिल्म की गल होगी ना तो राज कपूर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र हमेशा सब तो पहला किया जाऊगा। ऋषि कपूर ने इस फिल्म विच एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया सी अते अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के नाल नैशनल अवार्ड जीत लिया सी। फिल्म समझ के ना फिल्म का नाम से जी मेरा नाम जोकर ते ए आई सी 1970 दे विच। फिल्म की कहानी एक जोकर की जिंदगी तीन वक्त पड़ावां ते उसके अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ऋषि कपूर ने इस विच राज कपूर के बचपन का रोल निभाया सी। रिलीज होने ते फिल्म इन्नी बुरी तरह के नाल फ्लॉप हुई कि कपूर परिवार कर्ज विच डुब गया क्योंकि दर्शकों को इसका लंबा रन टाइम और गहरा ही इमोशनल कॉन्टेंट पसंद नहीं आया। पर साल बाद जब फिल्म को दोबारा देखा गया इस नूं एक टाइमलैस मास्टरपीस मनिया गया। अज यह दुनिया भर में सब तो ज्यादा देखी जाने वाली सब तो वड्डी कल्ट फिल्मों के विचों एक हैगी है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वाने हम ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली जेडी फिल्म है की है उसका नाम है जी दूसरा आदमी। दूसरा आदमी 1977 यानी कि 1977 दे विच आई सी फिल्म। यशराज बैनर दे तले बनी सी फिल्म, रमेश तलवार दे डायरेक्शन विच बनी सी दूसरा आदमी। रिश्तियां दे बारे विच एक बोल्ड कॉम्प्लेक्स ते अपने समय तो अगे दी फिल्म सी। ऋषि कपूर राखी गुलजार ते नीतू सिंह दे लीड रोल वाली ये फिल्म एक वड्डी उम्र दी औरत राखी दे इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुजरे हुए लवर दी इमेज एक बहुत छोटे आदमी ऋषि कपूर विच देखती है जिस विच दोनों दे विचकार एक अजीब इमोशनल टकराव शुरू हो जाता है। 1970 दे दहाके दे ट्रेडिशनल अते कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी नूं अजिहे वक्त अते कॉम्पलैक्स इंसानी रिश्तियां नूं अपनाउणा मुश्किल लगता सीगा जिस दे चलदिआं बॉक्स ऑफिस ते इस नूं ठंडा रिस्पोंस मिलिआ ते फ्लॉप हो गई। पर अज दे जमाने विच जद लोग मॉडर्न रिश्तियां अते साइकोलॉजिकल टकराव ते आधारित सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दी जबरदस्त परफॉर्मेंस अते फिल्म दी दिलचस्प स्क्रिप्ट नूं एक क्लासिक मन्निआ जांदा है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices. Open daily 9 AM.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 107.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा फिल्म दा है जी जमाने को दिखाना है। 1981 आई सी फिल्म नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने अपने ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं दिती सी इसलिए इस फिल्म नू तो भी काफी ज्यादा उम्मीदा सी। फिल्म दा म्यूजिक आज बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है के दिलदार का जो पहाड़ा में शूट हुआ सी एक कल्ट चार्टबस्टर बन गया। रिलीज होने दर्शकों को कहानी थोड़ी पुरानी है ते किसी पिटी लगी जिस कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साला विच ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग है ते बेहतरीन गाणियां ने फिल्म नू युवा दर्शकों वालों बार बार देखा क्या अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मों दे विचों एक है की है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इशूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोवेनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी आयनु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है का है फिल्म दा ओ है जी राही बदल गए। 1985 आई सी फिल्म रविचंदन दे डायरेक्शन विच बनी सी राही बदल गए। ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है की है जिसनु रिलीज होण ते ओ पहचान नहीं मिली जिसदे दे ओ हकदार सीगे। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी ते पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गियां जानिया मानिया एक्ट्रेस दे नाल डबल रोल कीता सी। फिल्म दी कहानी गलत फहमिया प्यार अते परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारां दे इर्द गिर्द घूमदी खूबसूरती नाल बुनी गई है। क्या आरजी बर्मन दा म्यूजिक है इस दे विच वी। 1980 दे दहाके दे विचकार जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन दी गल आउंदी है तां इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नूं थिएटर विच आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समें विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम अते स्लो म्यूजिक वाली फिल्म लभदे हैगे ने तां यूट्यूब अते ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ ए साबित करती है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई दे नाल जुड़ाव महसूस कीता है।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। अगली फिल्म हुण थोड़ा जिहा नेड़े आ जाने हैगे 90s दे विच चल जाने 80s दी गल कर रहे सी ना 90s दी फिल्म है 1999 दे विच आई सी फिल्म आप लौट चले। ऋषि कपूर ना अपने पूरे करियर विच एक शानदार एक्टर सी पर एक डायरेक्टर दे तौर ते उन्होंने 1999 विच ऐश्वर्या राय ते अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म आप लौट चले बनाई जो उन्हां दे दिल दे बहुत करीब सी। यह फिल्म विदेश विच रहण वाले भारतीयां ने अपने कल्चर उन्हां दे स्ट्रगल ते अपने देश लौटण दी एक खूबसूरत ते इमोशनल कहानी सीगी। रिलीज होने ते फिल्म दी स्लो अते सीरियस कहानी दर्शकों नूं पसंद नहीं आई जिसका नतीजा यह होया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस ते बुरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई सी। हालांकि अज दे दौर विच जद लोग फैमिली व्यूज ते जोर देण वाला ते अपनी जड़ां दे वल लौटण वाला सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दा इकलौता डायरेक्शन वेंजर उन्हां दी सीरियसनैस अते मेलोडीनस म्यूजिक दे नाल इक मास्टरपीस दे तौर ते याद कीता जांदा है।

0: तुझको पुकारे मेरा प्यार हो।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत बहुत ही जबरदस्त सा स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों आज कैसा फील कर रहे हो आप? जी हाँ, थर्सडे का दिन है और वीकेंड दूर नहीं है। वीकेंड का ख्याल ही एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ा देता है हमारे शरीर में। एंड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। सो या मैं यही पूछना चाहूंगी कि कैसा फील कर रहे हो, और अगर थोड़ा बहुत आप डाउन फील कर रहे हो तो डोंट वरी, मैं आपको अप करने आ गई हूँ, क्योंकि डाउन तो हम नहीं रहने देंगे आपको। जी हाँ, मतलब हम प्रोग्राम लेकर आए हैं तो आप डाउन कैसे रह सकते हो? सो अगर इन केस कुछ भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, इन केस आप डाउन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या काम काम काम निव्या, काम काम करके चली जाएगी जान। बात तो सही है, क्योंकि काम में ही हमारी जिंदगी जो है वो निकल जाती है, इस जद्दोजहद में ही हमारी जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी जिंदगी से कुछ पल निकाल कर खुशियों को भी समर्पित कीजिए। खुशियों के लिए भी निकालिए, अपने अपनों के लिए निकालिए, उन चीजों के लिए निकालिए जो आपकी खुश करती हैं। जी हाँ, एंड इसी के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। लेकिन सबसे पहले हेल्दी रिचुअल होगा प्रैक्टिस, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लंबी गहरी सांसें हैं ना, वो हमें इस दुनिया से जद्दोजहद में और फाइट करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती हैं। आप लोग बोलोगे फाइट निविया, नहीं नहीं हमें फाइट नहीं करनी, जहां पर फाइट लगी हुई है वहीं से हमारा भेजा हिल गया। बात तो सही है, चलिए फाइट के बारे में बात नहीं करते, प्यार के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले लंबी गहरी सांसें लेते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते थोड़ा सा हुकअप कर लिया जाए। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट हुकअप, व्हाट, क्या क्या कहने की क्या कोशिश कर रही हो? अरे मैं नहीं कह रही हुकअप करने के लिए, मतलब गाना है, हुकअप गाने का नाम है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा सबसे पहले मौसम के बारे में बात कर ली जाए। आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई निव्या शर्मा, बात तो सही है, पहले मौसम के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी प्लानिंग जो भी हम करने की सोच रहे हैं, बाहर जाना है नहीं जाना है, किस वक्त जाना है और कैसे जाना है, ये सब सोचना पड़ता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा हमें मौसम का हालचाल। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है, और अभी की अगर बात की जाए तो 23.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 21.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। जी हाँ, कल के मुकाबले एक और डिग्री गिरने वाला है टेम्परेचर, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। मैंने तो पहले ही कहा था, ठंडक जो है वो रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, और उसके लिए आपको रेडी होना है, आपको रेडी होना तो पड़ेगा। और हर एक मौसम का, हर एक सीजन का जो है वो अपनी एक खूबसूरती है, तो उसको एंजॉय कीजिए। जी हाँ, तो आज के टेम्परेचर का हाल तो मैंने आपको बता दिया, एयर क्वालिटी है एकदम फेयर और बारिश के चांसेस है 20%, यानी कि 20% चांसेस है बारिश के, जो कि ना के बराबर है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदा बांदी हो सकती है। जी हाँ, और अगेन वो भी कब तक हो सकती है, 4 बजे तक, उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए कल की यानी कि फ्राइडे की, तो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 20% चांसेस, यानी कि 20% चांसेस होंगे बारिश के, मतलब 20% चांसेस बारिश होने के, लेकिन टेम्परेचर रहने वाला है कल 24 डिग्री सेल्सियस के करीब, मोस्टली सनी मुझे दिख रहा है। सैटरडे को भी मुझे मोस्टली सनी दिख रही है सिचुएशन विद 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो सैटरडे को मौसम जो है वो अच्छा हो सकता है, और 30% चांसेस ऑल दो बारिश होने के, बट इसमें भी फेर बदल हो सकते हैं। आपको तो बताइए, मौसम है भाई, मौसम है, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, बट ना ना ना ना ना, कोई कहे कि वो बता सकता है कि एग्जैक्टली मौसम में क्या होने वाला है, ये तो मैं नहीं मान सकती। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है तेरे इश्क में।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया. अब किस चीज की बारी है? वेल ऑफकोर्स आपकी फरमाइशों की बारी है, और आपकी फरमाइशें हम तक कैसे पहुंच सकती हैं उसको बताने की बारी है. जी हाँ, मतलब कि अपने फेवरेट गाने, अजीज गाने और वो गाने जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, उन्हें फरमाइश करने का वक्त आ गया है. जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें फरमाइश. और नंबर है +91828887107. आई रिपीट, +91828887107. तो बस फिर किस चीज का इंतजार है? अगर इंतजार है भी तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अभी आएंगे तभी बात बनेगी. जल्दी से अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर दीजिए, और अगर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई गाना, उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देर मत कीजिए, जल्दी से आ जाइए. और मुझे है पूरी तरह से इंतजार यहाँ पर आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, एकदम मजेदार सा गाना, वाइबी सा गाना.

प्रिय दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ड्रोन सर्विस से पैकेजेस डिलीवर होते हुए देखे? आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, हम कैसे देखेंगे, हम यूएस में थोड़ी रहते हैं। पर बात में दम है, क्योंकि यूएस में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पूरी दुनिया में नहीं होती। आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, निव्या शर्मा चाइना में होती होंगी, क्योंकि चाइना कह ही तो रहा है कि यूएस तू करेगा क्या, अगर तू नहीं करेगा तो मैं करेगा। जी हाँ, सो ये वाली सिचुएशन जो है वो चाइना यूएस खेल रहे हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस एंड ड्रोन डिलीवरीज, बिकॉज एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर, जहां पर एक ड्रोन डिलीवर कर रहा है एक पैकेज को। लेकिन उस पैकेज को डिलीवर करने के हालात को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा है हमारे यहाँ पे ये ड्रोन सर्विसेज नहीं है। मतलब वो बहुत ऊपर से ही उसको छोड़ देते हैं। जी हाँ, मतलब काफी ऊपर से ही ड्रोन जो है वो नीचे लैंड तो नहीं करेगा उसको छोड़ने के लिए उस पैकेज को, तो वो ऊपर से ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्या ये पैकेज बचा हुआ है अभी तक भी, मतलब इसमें जो चीजें हैं वो टूट फूट तो नहीं गई। जी हाँ, अब अपेरेंटली ये ड्रोन जो है वो इतने कामगार हैं कि ये स्कैन कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्स्टेकल तो नहीं है जहां पे वो डिलीवर करने वाले हैं चीज, कोई जो है वो पेट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उनका पैकेज जब वो गिराने वाले उसके बाद उसको लेके भाग जाए। ये सारी चीजें स्कैन करने के बाद वो जो है वो उस पैकेज को डिलीवर करके चला जाता है। आप लोग बोलोगे कि ड्रोन सर्विसेज के लिए कितना महंगा पैकेज मंगवाना पड़ेगा? वेल, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स। एंड यहां पर ये सर्विस जो है वो 2024 में शुरू हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स उसको उसके बाद में थोड़े दिनों बाद ही बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये कामयाब नहीं है। ड्रोन सर्विसेज को लोग जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहे थे। सो ऐसे में ड्रोन सर्विसेज को जो है वो खत्म कर दिया, पूरी तरह से नहीं खत्म किया। ऑफ कोर्स कुछ जगह पर कैलिफोर्निया और एरिजोना में अभी भी ये चल रही है, टेक्सास में भी चल रही है, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पर नहीं चल रही है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग भी चाहते हो आपकी डिलीवरी जो है वो जल्दी जल्दी ड्रोन आए और करके चला जाए? आप लोग भी ऐसा चाहते हो कि आप लोग कहोगे कि निव्या शर्मा ड्रोन का तो पता नहीं, लेकिन अगर हमें ट्रैफिक से बचा के ड्रोन हमारे यहां से ऑफिस छोड़ दे तो मजा आ जाएगा। अरे अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि बात में दम है। पैकेज ड्रोन डिलीवर करे या ना करे, लेकिन हमको अगर डिलीवर कर दे तो बात पक्की है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को डायनासोर्स पसंद हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? और अगर आप लोगों को डायनासोर्स पसंद है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि कितने पसंद है। जी हाँ, और फिर जब आप मुझे बता दोगे कि आपको कितने पसंद है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि क्या आपको डायनासोर्स इतने पसंद हो सकते हैं कि आप अपनी वेडिंग में डायनासोर हेड्स पहन के पहुंचो। और या आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन वेडिंग, मतलब खुद की शादी में ही डायनासोर वेडिंग जो है उसे बना दो, डायनासोर्स हेड जो है वो पहनो और वैसे ही अपनी शादी को ऑफिशियलाइज करो। क्या आप बोलोगे? क्या आप मानोगे? क्या आप कहोगे कि हाँ निव्या, ये कर सकते हैं हम? वेल, मुझे नहीं लगता आप ऐसा बोलोगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले, और कुछ देर पहले से मैं क्या, उससे भी कुछ देर पहले से मैं एक वीडियो को देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और ये वीडियो एक कपल की है जिनकी शादी हो रही है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं। लड़की जो है, जो लेडी है, उसने बहुत ही खूबसूरत व्हाइट गाउन पहना हुआ है, जो बंदा है उसने बहुत ही खूबसूरत टक्सीडो पहना हुआ है, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिख रहे। आप लोग बोलोगे कि चेहरे क्यों नहीं दिख रहे? वेल, उन्होंने अपने सर पर डायनासोर हेड्स पहने हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने मुंह पर डायनासोर जो है उसका एक हेड पहना हुआ है। सो वो पूरे लिबास में दिख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ डायनासोर हेड दिख रहा है। जी हाँ, अब आप लोग कहोगे कि पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं क्या बात है, नाउ दैट्स माय काइंड ऑफ वेडिंग। जी हाँ, क्योंकि देर आर मेनी पीपल जिनको डायनासोर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, और नॉट जस्ट डायनासोर्स, मतलब वो किसी पर्टिकुलर क्रीचर के बारे में कुछ ज्यादा ही फील करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक कपल ने शादी की श्रेक के साथ, मतलब श्रेक थीम के साथ, दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है वो श्रेक थीम के कॉस्ट्यूम में पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने अपनी शादी को किया। कोई जो है वो वाटर स्की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहां पर लोगों ने डायनासोर हेड्स पहन लिए लिटरली। और यहां पर मैं इतना ही कह सकती हूं कि लिटरली इनको एक चीज तो पक्की है, एक चीज तो पक्की है कि इनको डायनासोर से बहुत ज्यादा प्यार है। गेस व्हाट, बहुत सारे लोगों ने कहा नाउ दैट्स माय काइंड ऑफ वेडिंग। अरे ये तो मेरी एनर्जी है, मैं भी कुछ ऐसा ही कर सकता हूँ। जी हाँ, ऐसे लोग कह रहे हैं। सो मैं इतना कहूंगी कि इतना प्यार भी कितना प्यार कि आपने अपनी शादी के दिन उसे लिटरली चैनल कर लिया, मतलब डायनासोर हेड्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बिकॉज जब मैंने उस वीडियो को देखा देन आई वाज लाइक एंड दोनों ही, द थिंग इज कि दोनों ही ने डायनासोर हेड्स पहने हुए थे, मतलब दोनों ही जो है वो डायनासोर्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप लोग बोलोगे ये तो राम मिलाई हो गई नहीं भैया, मतलब बात तो सही है, मतलब राम मिलाई जोड़ी और उसके बाद डायनासोर्स ने एक दूसरे को मिलवा दिया उनसे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, और अब जरा बात कर लेते हैं उस मोमेंट के बारे में जिसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया। जी हाँ, इट ब्रोक द इंटरनेट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलेनी की वो फोटोज जो कि लिटरली वायरल हो गई है। मतलब वायरल तो एक चीज है, उन लोगों की, मतलब उन दोनों की जो फोटोज पे लाइक्स एंड कॉमेंट्स है, अगर आप वो ही देखोगे तो यू विल बी लाइक कि व्हाट आर यू टॉकिंग। और निव्या, वेल अभी तक आपको पता चली गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसका शोर जो है वो हर देश में गूंज रहा है। सो यहां पर 187 मिलियन व्यूज हो गए हैं जो उन्होंने रील डाली, एंड गेस व्हाट, वो रील किसके बारे में। सो जॉर्जिया मेलेनी बड़े ही अच्छे से कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट अस अ गिफ्ट, जी हाँ, अ टॉफी, जी हाँ। एंड वहां पर वो सामने शो करते हैं दोनों मेलोडी, दोनों हंसते हुए कहते हैं मेलोडी। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी टेल यू, मेलोडी जो है वो इन दोनों के नाम को मिलाकर बनाया गया है। मतलब जो लोग इनको रोमांटिकली शिप करते हैं वो कहते हैं कि इन दोनों का नाम मिलकर, यानी कि मेलोनी और मोदी मिलकर मेलोडी बनता है। सो पहले ही ये चीज जो है वो हमेशा से बहुत ज्यादा फेमस रही है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने सोचा कि ओके ठीक है, अगर लोग इतना ही बोलते हैं तो चलो मैं ले ही जाता हूँ टॉफी। और वो सच में वो चॉकलेट, वो टॉफी जो है ले गए। एंड गेस व्हाट, इन दोनों ने सोचा कि अगर मैं ले ही आया हूं तो जरा इंटरनेट को पागल भी बना दिया जाए और इंटरनेट को थोड़ा क्रेजी कर दिया जाए। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। जी हां, 9.7 मिलियन लाइक्स हैं उस वीडियो पे। जी हां, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के वो जो लाइक्स वाला जो रिकॉर्ड था उसको डीथ्रोन कर दिया है। एंड सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी की वो टॉफी है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जॉर्जिया मेलेनी के पास, उसके शेयर्स तो इतने हाई हो गए हैं लिटरली, मतलब वो सोल्ड आउट हो गई है हर जगह। जी हाँ, और उन्होंने लिटरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू भी कहा है, थैंक यू मिस्टर मोदी हमें ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाने के लिए। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि देश की लगी पड़ी है, यहां पर आशिकी खत्म नहीं हो रही। और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे और भी फनी कॉमेंट्स है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं, बिकॉज दिस मोमेंट लिटरली ब्रोक द इंटरनेट। आप मुझे ये बताइए कि आपने वो फोटो देखी है जहां पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नरेंद्र मोदी एंड जॉर्जिया मेलेनी एक बालकनी से सामने के नजारे को देख रहे हैं। जी, क्योंकि वो सबसे पहली फोटो थी और उस पे भी 8 मिलियन लाइक्स हैं, तो इमेजिन उसके बाद क्या क्या क्या क्या हुआ है। जी हाँ, आई एम गोना टॉक अबाउट द कमेंट्स, बिकॉज कमेंट्स बहुत फनी थे, कमेंट्स बहुत ही जबरदस्त थे। और आपको तो बताइए, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी सोशल मीडिया में कमेंट्स पे होती है, विच आई एम गोना टॉक अबाउट। लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और खूबसूरत सा गाना।

0: चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
3: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
4: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों बात हो रही है एक ऐसे मोमेंट की जिसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया, एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी जी के बारे में, क्योंकि उन दोनों की मीटिंग ने लिटरली इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। मैंने आपको कहा कि कैसे जब उन्होंने फोटोज अपलोड करी थी तब भी इंटरनेट ब्रेक हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाली और उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक चॉकलेट का पैकेट जिसे मेलेडी कहा जाता है, जो कि एक इंडियन ब्रांड का है, उस ब्रांड की चॉकलेट को वो दे रहे हैं मेलेनी को, और वहां पर मेलेनी यानी कि जॉर्जिया मेलेनी एंड मोदी दोनों ही कह रहे हैं कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और इट इज मेलेडी। जी हाँ, और जब वो मेलेडी बोल रहे हैं दोनों ही हंस रहे हैं, जैसे कि दोनों को बताया कि इंटरनेट को क्या चाहिए। एंड यू नो व्हाट, इंटरनेट अगर ये मांग ही रहा है तो हम उसको दे ही देते हैं। जी हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि उसके बाद हुई, क्योंकि उसके बाद इतनी सारी रील्स बनी है ना, मतलब नैरेटिव चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है हवाओं में प्यार छाया हुआ है। सच में इन दोनों के बीच प्यार है या नहीं वो भी अलग बात है, मतलब नहीं है जहां तक, ये तो ऑफकोर्स यहाँ पे सोशल मीडिया का बनाया हुआ है, बट पर्दे के पीछे बात हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि लोगों का नैरेटिव चेंज हो गया। मीम्स आ रहे हैं जैसे कि गर्ल्स डोंट लेट मैन फूल यू, द करेक्ट मैन कैन रन अ कंट्री एंड स्टिल नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग यू अ पैक ऑफ मेलोडी। जी हाँ, मतलब लेडीज बोल रही हैं कि मतलब बंदों को अपने आप को फूल मत करने दो। जी हाँ, मतलब जो सही बंदा है ना वो कंट्री भी लीड कर सकता है और उसके बाद अपनी लेडी के लिए पैक ऑफ मेलोडी यानी कि पैक ऑफ चॉकलेट भी लेकर आ सकता है। मतलब हाँ, अगर आपके जो क्राइटेरिया है, जो बेयर मिनिमम अगर आपने सेट किया हुआ है, तो उसको हटा दीजिए, बिकॉज दे आर आर पीपल जो खतरनाक तरीके से प्यार करते हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पर यह कहा गया है, कुछ ने ये कहा है कि ओके, अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके लिए आप एक प्यारी सी साड़ी लेकर जाइएगा। वी वॉन्ट टू सी राजमाता इन अ साड़ी। जी हाँ, एंड आई थिंक दैट वॉज द फनीएस्ट वन। सबसे पहली बात तो यह है कि साड़ी देना इज नॉट अ बैड थिंग, बट राजमाता, उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को राजमाता बना दिया है लिटरली। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक बहुत ही अच्छा कपल बनाते हैं सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, लिटरली दैट इज द फनीएस्ट थिंग। कुछ कह रहे हैं कि क्या बात है, फ्लर्ट करना सीखे तो कोई मोदी जी से। कुछ कह रहे हैं बेस्ट कपल गोल्स। कुछ कह रहे हैं कि यार मतलब प्यार तो हो ऐसा। जी हाँ, और ऑफकोर्स लेडीज तो ये भी कह रही है कि बंदे अगर आपके लिए, मतलब आपके जो बंदे हैं, अगर आपको फोन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ देख लीजिए, मोदी जी लिटरली इतनी दूर से आए हैं और मेलोडी भी लेकर आए हैं। सो ऑफकोर्स नैरेटिव चेंज हो गया है, और मैं तो कहूंगी हवाओं में प्यार छाया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। बट इट इज रियली रियली रियली वेरी फनी। एंड द थिंग इज कि जॉर्जिया मेलोनी एंड नरेंद्र मोदी ऑल्सो नोज कि लोग जो है वो ये सब करते हैं और ये सब सोचते हैं, तो उन्होंने लोगों को और स्वाद दे दिया और जो है ये डिश सर्व कर दी, वो भी बहुत ही क्लासी वे में, बहुत ही ग्रेसफुली। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक फरमाइशी गीत प्ले करने का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है मुझको मेरा प्यार पुकारे, गुमराह मूवी का ये गाना है, 1963 में आई थी। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए अमला जी। हमेशा की तरह आपकी फरमाइशें जो है वो जबरदस्त होती हैं। ऐसे ही इन्हें बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, अब आगे से जब भी कोई मुझे कहेगा कि निविया तुम्हें हर बार नींद आ जाती है, हर जगह नींद आ जाती है, तुम कहीं भी नैप ले सकती हो, मतलब तुम अच्छी हो यार, तो मैं बोल दूंगी कि भाई ठीक है, मैं अपने ब्रेन को हेल्दी कर रही हूँ, मैं अपने ब्रेन को बड़ा बना रही हूँ। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेल आई एम गोना टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये है एक रिसर्च प्रूव्ड फैक्ट। जी हाँ, सो रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने एनालाइज किया है जेनेटिक एंड ब्रेन इमेजिंग डाटा फ्रॉम अराउंड 35,000 अडल्ट्स। उन्होंने देखा है और उन्हें पता चला है कि जो लोग दिन में नैप्स लेते हैं उनका ब्रेन वॉल्यूम जो है वो होता है एज कंपेयर टू वो लोग जो कि दिन में नैप नहीं लेते हैं। जी हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि जितने अमाउंट ऑफ नैप्स मैं लेती हूँ उस हिसाब से मेरा ब्रेन तो बहुत बड़ा है, कहीं मेरी बॉडी से बड़ा ना हो जाए। अरे क्या ही बोलती हूँ मैं, बट द थिंग इज कि यहां पर ये फैक्ट है और ये प्रूव हो चुका है। वेल, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है कि कैसे जो नींद है हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है, हमारा जो सोना है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनफैक्ट कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठने की जो है वो जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आप अपने ब्रेन को डिस्टर्ब करते हो। जी हाँ, वो जो अमाउंट ऑफ स्लीप एंड द गुड अमाउंट ऑफ स्लीप जो कि आपकी बॉडी को मिल रही होती है उसको आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है सुबह भी नहीं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा अगर तुम्हारी बातें मानी ना तो हमारे ऑफिस वाले हमें निकाल देंगे, हमारे कॉलेज वाले हमें निकाल देंगे, क्योंकि हम वहां पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आप अपने ब्रेन को डिस्टर्ब करते हो। जी हाँ, वो जो अमाउंट ऑफ स्लीप एंड द गुड अमाउंट ऑफ स्लीप जो कि आपकी बॉडी को मिल रही होती है उसको आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है सुबह भी नहीं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा अगर तुम्हारी बातें मानी ना तो हमारे ऑफिस वाले हमें निकाल देंगे, हमारे कॉलेज वाले हमें निकाल देंगे, क्योंकि हम वहां पहुंचेंगे ही नहीं, हम नींद के चक्कर में ही रह जाएंगे। ऑफकोर्स, आप

की जरूरत नहीं है, वो आपको हेल्दी बनाते हैं, आपके ब्रेन को हेल्दी बनाते हैं, आपके ब्रेन वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. या इट्स अ गुड थिंग. सो यू नो व्हाट, नैप इट आउट. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन एक बहुत ही जबरदस्त गाना है और मौसम को मैच कर रहा है.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।
0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, यानी कि खबरों का सिलसिला हो रहा है ऑफिशियली शुरू। मतलब बात होगी पॉलिटिकल वर्ल्ड की, बात होगी वॉर फ्रंट की, और बात होगी दुनिया की, क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं यूएन में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने ट्रंप की धमकियों पर कार्रवाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने मांग की है कि सुरक्षा परिषद को ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार और रोजाना दी जाने वाली धमकियों पर चुप या उदासीन नहीं रहना चाहिए। बीबीसी फारसी के मुताबिक अमीर सईद ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार की धमकियों के बावजूद परिषद की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा, ट्रंप ईरान पर बमबारी करने और उसे पाषाण युग में वापस भेजने की स्पष्ट धमकी देते हैं। उन्होंने देश के ऊर्जा, आर्थिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने और यहां तक कि ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की भी धमकी दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को चेतावनी दी कि ईरान के लिहाज से ये एक बेहद खतरनाक धमकी मानी जा सकती है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात करते हैं भारत की दिल्ली एनसीआर में ट्रक टैक्सी यूनियन की हड़ताल। जी हाँ, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी जो कि भारत की राजधानी है में ट्रांसपोर्ट और टैक्सी यूनियन की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। यूनियन ने सिटी गवर्नमेंट से इसके खिलाफ ये हड़ताल बुलाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ट्रक मालिकों, प्राइवेट बस मालिकों, टैक्सी और मैक्सी कैब ऑपरेटरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को एक बैठकर हड़ताल का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों पर लगाया गया पर्यावरण क्षतिपूर्ति सेस बढ़ा दिया है। यूनियन ने इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसके खिलाफ हड़ताल का फैसला भी किया है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। जरा बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने कहा है नेतन्याहू के साथ इसराइल में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। जी हाँ, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान अमेरिका ईरान तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में दिया। ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा था कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमले और आगे की रणनीति को लेकर क्या बात की है। इसी के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। वो बहुत अच्छे इंसान है। मेरी राय में इसराइल में उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। इस समय इसराइल में मेरी लोकप्रियता 99% है। मैं वहां प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकता हूं। रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर लंबी बातचीत हुई थी। उस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें चल रही थी, जबकि इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त रुख बनाए हुए हैं।

जी दोस्तों, आरएसए के साथ इटली की पीएम मेलोनी ने वीडियो पर जताई नाराजगी। जी हां, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजरायली मंत्री बेन ग्विर की ओर से शेयर की गई तस्वीरें नामंजूर है, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता है। इन प्रदर्शनकारियों, जिनमें कई इतालवी नागरिक भी शामिल थे, के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, ये मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। इटली सरकार इसमें शामिल इतालवी नागरिकों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर सभी जरूरी कदम उठा रही है। इटली इन प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार और इटली सरकार की स्पष्ट मांगों की पूरी तरह अनदेखी किए जाने पर माफी भी मांग करता है। इसी के कारण विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय इस पूरे मामले पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगने के लिए तुरंत इजराइल के राजदूत को तलब करेगा। इसराइल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो हथकड़ी पहने और घुटनों के बल बैठे कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल की नौसेना ने गाजा की ओर राहत सामग्री ले जा रही नावों के काफिले में सवार फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हो रही है।

जी हाँ दोस्तों, और अब जरा थोड़ा सा मजाक उड़ा लिया जाए, मतलब थोड़ा सा हंस लिया जाए, मतलब थोड़ी सी बात कर ली जाए डोनाल्ड डक के बारे में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जी हाँ, तो आपको तो पता ही अब क्या होने वाला है, वेल मजाक उड़ने वाला है। और इन केस आप डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको ये नहीं सुनना चाहिए, लेकिन इन केस आप नहीं करते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते हैं, सो सुनिए मजे से और हंसिए भी मजे से। जी हाँ, सो डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना में शी जिनपिंग ने जो पुतिन का वेलकम किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप सामने से क्या कहते हैं, सोचिए सोचिए। ऑफ कोर्स ये इंसान फेंकने के लिए पैदा हुआ है, फेंकने में ही फेंकते फेंकते ही उम्र जो है वो निकल गई है। ट्रंप कहते हैं कि चाइना ने जो पुतिन का वेलकम किया है, इट्स नॉट क्वाइट एज ब्रिलियंट एज माइन। सो यहां पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना ने जो उनका वेलकम किया था वो बहुत ही खतरनाक किया था, पुतिन का जो किया है वो इतना खतरनाक नहीं किया है। जी हाँ, और बड़े अच्छे से अपनी ही बातें करी जा रहे हैं। अच्छा चलिए, एक और चीज हुई जो बहुत ही फनी थी, और जब उनसे पूछा गया कि क्या सीन है आपके बॉलरूम का, जी हाँ, सो बेसिकली वो व्हाइट हाउस में बॉलरूम जो है वो नया बनवा रहे हैं, और वो नया बॉलरूम जो है वो ड्रोन प्रूफ है, मतलब ड्रोन अटैक भी वो बॉलरूम जो है वो सह सकता है। तो वो बड़े अच्छे से कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई एम डूइंग इट फॉर अमेरिका, आई एम डूइंग इट फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ अमेरिकन पीपल, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी है, मेरे लिए थोड़ी है, जब तक मैं यहां हूं तब तक तो ये बनेगा नहीं पूरी तरह, ये तो मैं अपने अमेरिकन लोगों के लिए कर रहा हूं। आई वंडर कितने अमेरिकन लोग वहां पर जाकर म्यूजिकल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वहां पर जाकर प्रोम नाइट पर जाने वाले हैं, मतलब बॉलरूम है लेकिन व्हाइट हाउस का कितने लोग जा रहे हैं। और यहां पर ये इंसान कह रहा है कि यू नो व्हाट, आई एम डूइंग इट फॉर अमेरिका एंड अमेरिकन पीपल। अमेरिकन पीपल ये सोच रहे हैं कोई इस इंसान को ले जाओ, इसको लेके जाओ, नहीं तो हमको नहीं जमेगा, हमको बिल्कुल नहीं जम रहा है ऑलरेडी, और नहीं जमेगा, इसको कोई लेके जाओ। जी हाँ, एंड गेस व्हाट, अभी चाइना से आए हैं, वहां पे भी एक नया अफलातून काम कर दिया उन्होंने। चाइना से आए और वहां पर कहते हैं कि यू नो व्हाट, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मुझसे कह रहे थे कि रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन पर, वो पुतिन कह रहे थे कि वो बहुत ही बड़ी गलती थी। मतलब शी जिनपिंग ने उनको बताया है कि पुतिन उनसे कह रहे थे कि उन्होंने जो यूक्रेन पे अटैक किया है वो बहुत ही बड़ी गलती है, वो गलती हो गई है मुझसे। जी हाँ, और वहां पे शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, बिड़ू तुम कहाँ से आते हो, सुबह क्या खाते हो, और फिर उसके बाद अपने मुंह से क्या निकालते हो। जी हाँ, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स मिस्टर ट्रंप फॉर यू। पर यहाँ पे ये कहना है कि पुतिन का वेलकम इतना ग्रैंड नहीं है जितना मेरा है, अरे आप कौन हो। जी हाँ, आई डोंट नो, दिस मैन इज सो फनी, मतलब अपनी बड़ाई सुबह से लेकर रात तक कर सकता है ये इंसान, लिटरली, मतलब इस उम्र में भी अपनी बड़ाई ये पूरी तरह से कर सकता है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
14: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
13: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
14: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
13: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
15: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
16: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
15: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
16: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
15: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
16: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
17: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
18: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
19: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों कल ही की बात है, मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हो गया। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है, जब सिबलिंग्स के साथ आप झगड़ते हो तो आप ऐसी ऐसी चीजें बोलते हो जो कि उनको सबसे ज्यादा बुरी लगे। मतलब उनको चिढ़ाते हो, उनको ऐसा फील करवाते हो कि वो तो अडॉप्टेड है, आई यू नो इट ऑल द अदर थिंग्स। सो ऑफकोर्स कल मेरी लड़ाई हुई और उसके बाद इंटरनेट को ये भी पता चल गया कि मेरी हुई है लड़ाई मेरे भाई के साथ, मतलब मेरे सिबलिंग के साथ, तो उन्होंने मुझे एक मीम भेजा और वो मीम जब मुझे आया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप लोग भी अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ते हो, या इट्स जस्ट फॉर सिबलिंग्स, कहीं और नहीं करना है, देन इट कैन बी अ रेसिज्म. अगर आप सिबलिंग्स के साथ करोगे देन इट्स नॉट अ रेसिज्म. जी हाँ. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ऑफकोर्स आपको मैं बताने वाली हूँ आप क्या कह सकते हो. अगर आपके भाई बहन भी आपसे लड़ते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, तो आपको बस इतना ही कहना है. जी हाँ, क्या? रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, फेसेस लाइक योर्स बिलोंग इन अ ज़ू, डोंट बी मैड, आई विल बी देयर टू, नॉट इन अ केज बट लाफिंग एट यू. जी हाँ, ऑफकोर्स मैंने कहा था कि ये सिर्फ सिबलिंग्स के लिए, और कहीं पे करेंगे तो रेसिज्म हो जाएगा, तो और कहीं किसी और को नहीं बोलना है. लेकिन हाँ, अगर आपके भाई बहन आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो फिर आपको खुली छूट है, आप मस्त तरीके से ये बोलिए. देखिए फिर वो आपको कैसे देखते हैं कि ओके कम बैक किया है तुमने. जी हाँ, मैंने तो अपने भाई को ये बोल दिया है, आप भी देख लीजिए कब बोलने वाले हो. जी हाँ, एंड आई होप आपके भाई बहन ये ना सुन रहे हो, क्योंकि देन दे विल बी लाइक ओके निव्या शर्मा गलत सलाह दे रही है तुम हमारे सिबलिंग्स को. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है, और ये खूबसूरत होने के साथ साथ एक ऐसी लेडी का गाना है जो कि लिटरली ग्रेस से भरी हुई है.

जी दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर इबोला वायरस के बारे में जरा बात कर ली जाए। मैं करना नहीं चाह रही थी इसके बारे में बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। थोड़े दिन पहले हम हंटा वायरस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हंटा वायरस टर्न आउट कि वो इतना डेडली नहीं है और उसके बढ़ने के जो चांसेस हैं वो भी कम है। लेकिन इबोला वायरस जो कि युगांडा से शुरू हुआ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से शुरू हुआ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि डेथ टोल जो है वो 139 हो गया है। जी हाँ, 139 जो है वो डेथ टोल हो गया है। 139 लोग अभी तक इबोला वायरस से अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका के भी कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन सिटीजन्स को भी इबोला वायरस हुआ है। बहुत सारी और कंट्रीज ने अपनी एडवाइजरी जारी कर ली है, फिर चाहे कोई भी कंट्री हो, सब कंट्रीज ने, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी इबोला एडवाइजरी जारी की है। आपको मैं बता दूं कि WHO के जो हेड है उन्होंने कह दिया है कि इबोला वायरस से मरने वालों की संख्या तो अभी 139 यानी कि 139 है, लेकिन 600 सस्पेक्टेड केसेस और हैं। मतलब वो केसेस जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए हैं, मतलब वो पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो सस्पेक्टेड हैं, क्योंकि वो उन लोगों के आजू बाजू से होकर गए हैं जिन लोगों को इबोला वायरस हुआ है। जी हाँ, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो कि इन लोगों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये हुआ है और उनकी भी डेथ्स के जो है वो न्यूज आ रही है। सो ऐसे में इबोला वायरस जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है वायरस वो इबोला वायरस का एक वर्जन है जिसका नाम है बंडियोग्यो वायरस। जी हाँ, बंडियोग्यो वायरस, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट द थिंग इज कि ये वाला जो है वो, ये वाला जो स्ट्रेन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एज सच, और इसीलिए डेथ टोल भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। जी हाँ, और ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अगर को एक जगह पर नहीं खत्म किया गया तो काम खराब। देखेंगे इसकी, ये वाला जो है वो, ये वाला जो स्ट्रेन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एज सच, और इसीलिए डेथ टोल भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। जी हाँ, और ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अगर इसको एक जगह पर नहीं खत्म किया गया तो काम खराब हो सकता है, और भी कंट्रीज के लोगों को

0: बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ दोस्तों। और इसी के साथ अब हम शुरू करने वाले हैं अपने फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड को। तो आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, करते रहिए और वैसे ही रहिए, उधर ही रहिए, बट हमारे इस सेगमेंट को सुनना बिल्कुल मत भूलिए। जी हाँ, सेगमेंट को आराम से ध्यान से सुनिए क्योंकि अब आपके फेवरेट गाने मैं प्ले करने वाली हूँ। जी हाँ, पुराने गाने, खूबसूरत गाने जिनके लिरिक्स, जिनके बोल, जिनकी धुन, जिनकी गायकी, सब कुछ एकदम मेमोरेबल है। सो ऑफ कोर्स वी आर गोना सेलिब्रेट दो सॉन्ग्स एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद ग्रेट ग्रेट किस्साज ऑफ दैट टाइम। जी हाँ, जो किस्से हैं वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, उनको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो एक गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, और ये है शौकियों में घुला जाए। आई डोंट नो, बट एक सेलिब्रेटरी सा गाना जो है वो प्ले करने का मन कर रहा था स्टार्टिंग में इस सेगमेंट के। सो ये है देवानंद साहब का हमारा फेवरेट गाना।
1: शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ दोस्तों, जब प्राण साहब से एक इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि जब 1920 में आपकी माँ ने आपका नाम रखा था तो उन्होंने सोचा था कि बहुत ही खूबसूरत नाम है, लेकिन 1960 के दशक के बाद कोई भी माँ अपने बच्चे का वो नाम रखने से डरती थी, जब आपको ये पता चला तो आपको कैसा फील हुआ? वेल, प्राण साहब सामने से कहते हैं, वेल मुझे ऐसा लगा कि अच्छी बात है अगर नहीं रख रहे, नहीं तो मैं रावण की तरह हर जगह फेमस हो जाता। जी हाँ, और फिर जब इंटरव्यूअर ने कहा कि कैसा लगता था जब लोग आपको देखकर डरते थे, आपको अच्छा लगता था या बुरा लगता था, तो प्राण साहब ने बड़े ही अच्छे से सामने से बोला कि मुझे अच्छा लगता था। जी हाँ, अगर वो मुझसे नहीं डरते तो मुझे बुरा लगता, क्योंकि अगर वो मुझसे नहीं डरते उसका एक ही मतलब होता कि मैं अपने रोल्स को जो है वो अच्छे से नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब मैंने रोल किए अपने, और वो भी इस कदर किए कि लोगों ने मुझे सच में रियल लाइफ में विलन मानना शुरू कर दिया, मैं जब भी जहां से गुजरता था वो मुझे कहते थे चोर, डाकू, विलन, जी हाँ ऐसे नामों से मुझे पुकारते थे। लेकिन कभी मुझे ये सुन के बुरा नहीं लगा, क्योंकि इससे मुझे पता चल गया कि मैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ पूरी तरह से जस्टिस कर रहा हूं। लेकिन अगेन, फिर बाद में कुछ लोगों को ये पता चल गया जब मैंने वो विलन कैरेक्टर्स प्ले करने बंद कर दिए, मैंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, तो लोगों को जब मैं रियल लाइफ में उनसे रूबरू हुआ तो उनको पता चला कि ये इंसान तो अच्छा भी है। जी हाँ, मतलब पर्दे पे ही सिर्फ बुरे रोल्स करता था लेकिन रियल में अच्छा है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, जब जब यूसुफ साहब यानी कि दिलीप साहब की बात होती है तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग उनको एडमायर करते हैं। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सितारे उनको एडमायर करते हैं, फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो, फिर चाहे धर्मेंद्र हो, फिर चाहे कोई कितने भी और स्टार हो, सब के सब लोग दिलीप साहब को एडमायर करते हैं। जी हाँ, जब सारा बानो जी से पूछा गया कि आपको क्या इंटरेस्ट था, कैसे इंटरेस्ट था दिलीप साहब में, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी बात में था कि ये सुलझा हुआ सा, सुंदर सा लड़का, सुलझा हुआ सा, एकदम शांत सा लड़का कैसे इतना बड़ा स्टार बन गया। जी हाँ, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे कि वो दिलीप साहब को बहुत ज्यादा जानते हैं, दिलीप साहब को वो मिलते हैं, दिलीप साहब से वो बातें करते हैं और दिलीप साहब के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। उनकी बायोग्राफीज जिन्होंने लिखी वो भी ये कहते थे कि दिलीप साहब के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो दिलीप साहब को जानते ही नहीं थे। जी हाँ, लेकिन ये बात मुझे तब पता चली जब मैं उनसे शादी कर चुकी थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दिलीप साहब इकलौते ऐसे एक्टर थे जब उनकी कोई एक्टिंग करता था, उनकी कोई नकल करता था, तो दिलीप साहब ये नहीं कहते थे कि कोई मेरी नकल कर रहा है या कोई मेरी एक्टिंग कर रहा है। वो ये कहते थे कि ठीक है, किसी को मेरी परफॉर्मेंस किसी पिक्चर में, किसी पर्टिकुलर सीन में पसंद आई होगी और उससे वो इंस्पायर होके जो है उसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। दैट डजंट मीन कि उनमें खूबी नहीं है। सारा बानो ये बोलते हुए एकदम प्राउड फील कर रही होती हैं। जी हाँ, और यहाँ पर उनके चेहरे से पता चल रहा होता है कि कितना ज्यादा एडमायर वो अपने हस्बैंड को करती है, बट वही नहीं, पूरी दुनिया उनको एडमायर करती थी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, घड़ी ने कर दिया है इशारा और कह दिया है कि निव्या शर्मा, अब तुमको होगा जाना, क्योंकि हमको और भी काम करना है और बनाना है खाना। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ, खाना बनाना या खाना खाना, वो तो आपकी मर्जी है। खाना तो आप बना चुके होंगे, शायद आप खाना खा भी चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी। क्या? अपने खाने को ना इंजॉय करना सीखिए, कभी भी भगदड़ में खाना मत खाइए। जी हाँ, मैंने ना एक चीज रियलाइज की है, जब आप खाना शांति से खाते हो ना, जल्दी जल्दी में नहीं खाते हो, मतलब हड़बड़ाहट में नहीं खाते हो, तो आपकी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहती है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस। जी हाँ, सो खाना खाइए, लेकिन आराम से खाइए, एकदम पूरा इत्मीनान से खाइए। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अब आपसे कल, और कल है फ्राइडे, मजे करेंगे, फन करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। सो बेसिकली सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। आज आपको क्या करना है? वेल ऑफकोर्स जो मैंने कहा है वो करना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है।

दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़।

यार भी थोड़ा तेरे बिना जीना, मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। ओ दिल भर जा, ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ई स्कूटर और ई बाइक नियमों पर ब्रिस्बेन काउंसिल का कड़ा रुख। जी हाँ, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल और मेयर एड्रियन श्रीनर ने कड़ा रुख अपनाया है। काउंसिल ने सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें ई बाइक चलाने वालों के लिए मिनिमम उम्र और लाइसेंस जरूरी करने की बात कही गई थी। वहीं क्वीन स्ट्रीट मॉल में फ्री हेल्थ चेकअप। अगर आज आप शॉपिंग के लिए क्वीन स्ट्रीट मॉल गए हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। स्ट्रोक फाउंडेशन के नेशनल कैंपेन के तहत आज वहां लोगों को बिल्कुल मुफ्त में ब्लड प्रेशर चेकअप की सुविधा दी जा रही थी। तो शॉपिंग के साथ साथ अपनी सेहत का हाल भी जरूर रखिएगा। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए नया डिजिटल असिस्टेंस सिस्टम। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आज से इंटरनेशनल टर्मिनल पर एक नया AI पावर डिजिटल गाइडेंस सिस्टम शुरू किया है। इसकी मदद से यात्रियों को बैगेज क्लेम और गेट ढूंढने में आसानी होगी। वहीं साउथ बैंक में वीकेंड विंटर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। मौसम में आ रही ठंडक के साथ ही साउथ बैंक पार्कलैंड्स में इस वीकेंड से शुरू होने वाले विंटर आर्ट एंड फूड फेस्टिवल की तैयारी जोरों पर है। वहीं शहर में कुछ रूटों पर आज रात रोड क्लोजर। ब्रिस्बेन के ड्राइवरों के लिए एक जरूरी ट्रैफिक अपडेट। रोड मेंटेनेंस के काम के चलते आज रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक शहर के कुछ अंदरूनी रास्तों पर आंशिक रूप से ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। वहीं ब्रिस्बेन की यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट वीक का आगाज। ब्रिस्बेन की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में आज से इंटरनेशनल स्टूडेंट वीक की शुरुआत हो गई है। इसमें भारत सहित दुनिया भर से आए छात्रों के लिए कल्चरल इवेंट्स और करियर काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए गए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। आज 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा ईडी माइनिंग ऑपरेशन। केंद्र सरकार की तरफ से नक्सल मुक्त भारत के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा डी माइनिंग अभियान शुरू किया है। वहीं टीवी रेटिंग्स में बड़ा उलटफेर। मनोरंजन की दुनिया से खबर है कि आज रिलीज हुई बाक इंडिया की वीकली रेटिंग्स में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वहीं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर सरकार का कड़ा एक्शन। देश में बढ़ते ऑनलाइन और डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने आज एक नई एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती। वहीं गर्मी का कहर और मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का टॉर्चर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन का ट्रायल सफल। भारतीय रेलवे से एक अच्छी खबर। आज देश की पहली सेमी हाई स्पीड कार्गो यानी कि मालगाड़ी ट्रेन का फाइनल ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर आखिरी कूटनीतिक दबाव दांव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे बड़ी हलचल अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ चल रहे तनाव और युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को एक आखिरी मौका दे रहे हैं। वहीं पूर्व क्यूबाई राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिकी केस। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। वहीं टेक वर्ल्ड में हलचल। एनवीडिया का धमाकेदार मुनाफा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने आज अपने पहले क्वार्टर के नतीजे जारी किए। वहीं तुर्की और अमेरिकी राष्ट्रपति की फोन पर बातचीत। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज एक अहम फोन कॉल हुई। वहीं टेक कंपनी मेटा में ग्लोबल छंटनी शुरू। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने आज से सिंगापुर हब के जरिए एशिया में अपनी बड़ी छंटनी का दौर शुरू कर दिया है। वहीं जापान में भूकंप के तेज झटके। जापान के दक्षिणी हिस्से में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले जेनिक सिनर ने जीता इटालियन ओपन का खिताब। टेनिस कोर्ट से बड़ी खबर, दुनिया के स्टार खिलाड़ी जेनिक सिनर ने रोम में खेले गए इटालियन ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर इस साल का एक और बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं आईपीएल 2026 कोलकाता और हैदराबाद की शानदार जीत। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल अपडेट, कल रात खेले गए रोमांचक मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। वहीं दूसरी ओर सनराइजर हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। वहीं भारतीय वेटलिफ्टिंग ने जीते 10 मेडल। जी हां, गांधीनगर में चल रही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 से भारत के लिए गौरव का पल आया है। भारतीय टीम ने इस चैंपियनशिप का अंत 10 मेडल्स के साथ किया। वहीं कांगो फुटबॉल टीम का वर्ल्ड कप कैंप रद्द, बेल्जियम शिफ्ट। फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर, कांगो की नेशनल फुटबॉल टीम ने देश में फैले इबोला वायरस के चलते अपना प्री वर्ल्ड कप ट्रेनिंग कैंप रद्द कर दिया है। इसी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी मैच ड्रॉ। भोपाल में खेली जा रही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 18 मेंस हॉकी सीरीज का चौथा और आखिरी मैच 3-3 की बराबरी पर छूटा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
4: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू से। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसीं बने होए जी तुहाडे अपने चाहीती रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत सोहणा जवड़ा शुरू हो चुक्या जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल असीं इन्हां गल्लां नूं पंजाबी गीतां दा तड़का जरूर लगाउणा हैगा। तुसीं की करना है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो सोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी, brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी अपना लो, पर साडा गल्लां बातें देखो जरूर करो। तां इंज करो, फटाफट दे नाल अपना फोन चुको ते सानू सुनेहे भेजने शुरू करो, नालों नाल अपनियां फरमाइशां भी रखो ते गीत केड़े सुनना चाहुंदे हो वी दसो, है ना। तां जुड़ना शुरू करो, मैं हुणे वापस आउंदी हां। उहनां समां नूं सोहणे जिहे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मा दो तरह नाल इतिहास रचदियां ने। एक ओ जो रिलीज दे पहले हफ्ते विच करोड़ां दी कमाई कर जांदियां हैगियां ने अते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने। दूसरियां ओ जो थिएटर विच भावें चंगा परफॉर्मेंस ना देण पर दर्शकां दे ज़हन विच ना सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने, समझ गए तुसीं ना कि मैं ऋषि कपूर दी गल करन वाली आ। जी हां, ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर सीगे जिन्हां ने 5 दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर फिल्मां बॉबी वर्गियां बॉबी विच लीड हीरो दे तौर ते शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने ना अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फिल्मां दे पिछे नहीं भज्जे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्मग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल ने जो रिलीज दे समय बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गया पर अज जो फिल्मां हर सिनेमा लवर दे बेस्ट लिस्ट विच जरूर देखिया जांदियां है। दसन लग्या उन्ना ही फिल्मां बारे विच जिन्हां ने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट विच फ्लॉप करार दिते जाण दे बावजूद ना बॉलीवुड विच सब तो ज्यादा उन्हां नूं पसंद किया जा रहा। दस दी एक एक करके पहला सुनो एक गीत।
1: So do we see all our baby?

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो जादवी बॉलीवुड की सब तो वड्डी अते बहुत वड्डी फिल्म की गल होगी ना तो राज कपूर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र हमेशा सब तो पहला किया जाऊगा। ऋषि कपूर ने इस फिल्म विच एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया सी अते अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के नाल नैशनल अवार्ड जीत लिया सी। फिल्म समझ के ना फिल्म का नाम से जी मेरा नाम जोकर ते ए आई सी 1970 दे विच। फिल्म की कहानी एक जोकर की जिंदगी तीन वक् वक् पड़ावे उसके अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ऋषि कपूर ने इस विच राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। रिलीज होने ते फिल्म इनी बुरी तरह दे नाल फ्लॉप हुई कि कपूर परिवार कर्ज विच डुब गया क्योंकि दर्शकों को इसका लंबा रन टाइम और गहरा इमोशनल कॉन्टेंट पसंद नहीं आया। पर साल बाद जब फिल्म दोबारा देखा गया इस नू एक टाइमलैस मास्टरपीस मनिया गया। अज दुनिया भर में सब तो ज्यादा देखी जाने वाली सब तो वड्डी कल्ट फिल्मों के विचों एक हैगी है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हांजी जी आरू जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन आल से बने हुए। अगली फिल्म है जी 1980 दे विच आई कर्स। सुभाष कई दे डायरेक्शन विच बनी सी कर्स। एक जबरदस्त म्यूजिकल थ्रिलर सी जो पुनर्जन्म ते बदले दे बैकग्राउंड ते बनी है कि इस विच बॉलीवुड विच इसने बॉलीवुड विच सस्पेंस ते म्यूजिक ते कंबीनेशन नू फिर तो प्रभाषित कीता सीगा। ऋषि कपूर ने एक रॉक स्टार मोंटी दा रोल कीता जो अपनी मौत ते अपनी पिछली जिंदगी दे कातल नाल अपनी मां दी बेइज्जती दा पतला लैंदा है। हैरानी दी गल है कि जदे फिल्म 1980 विच थिएटर विच आई तां ना ए बॉक्स ऑफिस ते पूरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। उस समय रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी दे नेड़े तेड़े ही हाइप दा सामना करना पिया जिसनों फ्लॉप घोषित कर दिता गया। पर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ऋषि कपूर दे मशहूर गाने ओम शांति ओम दा म्यूजिक समय दे नाल इन्ना असर हो गया उस तरह कि इस फिल्म ने बॉलीवुड दे इतिहास दी सब तो वड्डी थ्रिलर फिल्मां विच जगह बनाई ते आने वाले सालां विच इस फॉर्मूले दे कई ब्लॉकबस्टर फिल्मां भी बनियां।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

तो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन ओवाने हम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली जड़ी फिल्म है की है उसका नाम है जी दूसरा आदमी। दूसरा आदमी 1977 यानी कि 1977 दे विच आई सी फिल्म। यशराज बैनर दे तले बनी सी फिल्म। रमेश तलवार दे डायरेक्शन विच बनी सी दूसरा आदमी। रिश्तियां दे बारे विच एक बोल्ड कॉम्प्लेक्स ते अपने समय तो अगे दी फिल्म सी। ऋषि कपूर राखी गुलजार ते नीतू सिंह दे लीड रोल वाली ये फिल्म एक वड्डी उम्र दी औरत राखी दे इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुजरे हुए लवर दी इमेज एक बहुत छोटे आदमी ऋषि कपूर विच देखती है जिस विच दोनों दे विचकार एक अजीब इमोशनल टकराव शुरू हो जाता है। 1970 दे दहाके दे ट्रेडिशनल अते कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी नूं अजिहे वक अते कॉम्पलैक्स इंसानी रिश्तियां नूं अपनाउणा मुश्किल लगता सीगा जिस दे चलदिआं बॉक्स ऑफिस ते इस नूं ठंडा रिस्पोंस मिलिआ ते फ्लॉप हो गई। पर अज दे जमाने विच जद लोग मॉडर्न रिश्तियां अते साइकोलॉजिकल टकराव ते आधारित सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दी जबरदस्त परफॉर्मेंस अते फिल्म दी दिलचस्प स्क्रिप्ट नूं एक क्लासिक मन्निआ जांदा है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें। मिक्सिंग इन द हाउस।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा फिल्म दा है जी जमाने को दिखाना है। 1981 आई सी फिल्म नासिर हुसैन के डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा हैगी है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोलापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने अपने ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं दिती सी इसलिए इस फिल्म नू तो भी काफी ज्यादा उम्मीदा सी। फिल्म का म्यूजिक आज बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर का गाना दिल लेना खेल है के दिलदार का जो पहाड़ा में शूट होया सी एक कल्ट चार्टबस्टर बन गया। रिलीज होने ते दर्शकों को कहानी थोड़ी पुरानी है ते किसी पिची लगी जिस कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई है ते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल विच ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग ते बेहतरीन गाणियां ने फिल्म नू युवा दर्शकों वल्लों वार वार देखिया गया अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मां दे विचों एक हैगी है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नु दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोवेनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। अगली फिल्म हुण थोड़ा जिहा नेड़े आ जाने हैगे 90s दे विच चल जाने 80s दी गल कर रहे सी ना 90s दी फिल्म है 1999 दे विच आई सी फिल्म आप लौट चले। ऋषि कपूर ना अपने पूरे करियर विच एक शानदार एक्टर सी पर एक डायरेक्टर दे तौर ते उन्होंने 1999 विच ऐश्वर्या राय ते अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म आप लौट चले बनाई जो उन्हां दे दिल दे बहुत करीब सी। यह फिल्म विदेश विच रहण वाले भारतीयां ने अपने कल्चर उन्हां दे स्ट्रगल ते अपने देश लौटण दी एक खूबसूरत ते इमोशनल कहानी सीगी। रिलीज होने ते फिल्म दी स्लो अते सीरियस कहानी दर्शकों नूं पसंद नहीं आई जिसका नतीजा यह होया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस ते बुरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई सी। हालांकि अज दे दौर विच जद लोग फैमिली व्यूज ते जोर देण वाला ते अपनी जड़ां दे वल लौटण वाला सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दा इकलौता डायरेक्शन वेंजर उन्हां दी सीरियसनैस अते मेलोडीनस म्यूजिक दे नाल इक मास्टरपीस दे तौर ते याद कीता जांदा है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Ireland food.
0: ऐसा क्या?

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइस

ना बदला में

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप हैं इस नई सुबह आपकी सताक्षी के साथ, और आज से एक नए सफर की, आज के दिन के साथ नई शुरुआत, जीवन आधार। जी हाँ, इसी कार्यक्रम में आज से होगी आपसे मुलाकात। जीवन का आधार वो ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, ईसा मसीह, आप उसे जो भी नाम दे दे वो है, और आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाला भी वही है। तो चलिए उस खुदा की, उस ईश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की, उस सच्चे बादशाह की करते हैं आज एक बार फिर से वंदना, जीवन आधार में सताक्षी के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है, उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यज्ञ लगाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार, और इस सफर में आज से हर रोज आपकी हम सफर सताक्षी आपका साथ निभाती रहेगी। जब तक आप उस ईश्वर को मैं के साथ जोड़ते हैं, जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी पर।

रेडियो बृसवानी 1701 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो बृसवानी पर हमारे साथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजनी सभम। गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे। यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है। वही सबको बनाने वाला है। उसकी कोई मूरत नहीं है, वो किसी का दुश्मन नहीं है, जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है, जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है। आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए। उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को आपके अपनी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन की तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे चांदनी और सुबह के इस प्यारे शो में आप सबका दिल से वेलकम है। आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर। दोस्तों, आज की मॉर्निंग होने वाली है बहुत ही ज्यादा फिल्मी, यानी बहुत ज्यादा फिल्मी नहीं, उसमें बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी होगा, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ बॉलीवुड की उन लेजेंडरी मूवीज के बारे में बात करूंगी जो सिर्फ फिल्म नहीं इमोशंस भी थी। तो चलिए फिर, रेडी रखिए, यानी अपने हाथ में चाय। अगर आप घर पर हो तो आप चाय का प्याला ले सकते हैं, और अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो बस मन में चाय का स्वाद ले लीजिए। सोच लीजिए आप और मैं चाय पी रहे हैं, जी हाँ। और चलिए फिर चलते हैं इसी खुशी में एक प्यारा सा बॉलीवुड के गोल्डन एरा में, जो मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत को सुनने के बाद हम जानेंगे आज का कुछ हटकर चीज, वो क्या है थोड़ा आप भी सोच लीजिए। तब तक आप इस गीत को एंजॉय कीजिए और साथ साथ सोचते रहिए कि आखिर वो क्या टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए फिर चलते हैं बॉलीवुड के गोल्डन एरा में। सबसे पहले दोस्तों, अगर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक मूवी के नाम की बात की जाए या नाम लिया जाए, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है शोले। जी हाँ दोस्तों, जब शोले रिलीज हुई थी 1975 में, शुरू के कुछ हफ्तों में मूवी बहुत ज्यादा फ्लॉप हो गई थी, यानी कि फ्लॉप मानी जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इतना प्यार दिया कि वही फिल्म इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बन गई। जी हाँ, और दोस्तों गब्बर सिंह का डायलॉग सबको ही याद होगा। सोचिए, हाँ जी वही डायलॉग, कितने आदमी थे। आज भी लोग सेम स्टाइल में ही बोलते हैं, कितने आदमी थे। दोस्तों मूवी का जो क्लाइमेक्स ओरिजिनली काफी अलग था, लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से चेंज करना पड़ा था। तो दोस्तों आइए इसी प्यारे प्यारे से बातों के बीच अब हम सुनते हैं ये गीत, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, आपकी और मेरी दोस्ती भी यूं ही बरकरार रहेगी। तो आइए ये गीत सुनते हैं, उसके बाद जानेंगे और भी बहुत सारी बातें रेडियो प्रसवानी में।

नथिंग शुड बी गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर. इफ थिंग्स आर गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर, तो आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं. दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर को देख लो, किसी भी फील्ड में उनकी शुरुआत देखो कहाँ थी, कहाँ पहुँच गए. लेकिन अगर शुरू से आदमी बड़ा पैदा हुआ हो तो उसको आगे कहाँ जाना है भाई? जो अचीव कर चुके हैं उनको और आगे क्या है सिवाय देवनंद के? तो मैं तो ये समझता हूँ मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया अभी तक. इट्स नॉट एन ईगो, इट्स अ फैक्ट.

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो चलिए अब कुछ और मस्त फिल्मी बातें करते हैं। दोस्तों, मुगले आजम मूवी का फेमस सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या, जी हाँ, ये सॉन्ग जो है उसका सेट उस टाइम इतना एक्सपेंसिव था दोस्तों, इतना एक्सपेंसिव था कि उसके जो मिरर्स थे वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम से मंगवाए गए थे, इतने एक्सपेंसिव थे। और एक और अमेजिंग बात याद आई, अमिताभ बच्चन को शुरुआत में दोस्तों रेडियो ने ऐसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा हैवी थी। और आज देखो, उनकी वॉइस ही उनकी पहचान है। देखा, कभी कभी जो चीज लोग वीकनेस बोलते हैं ना, वही चीज जो है फ्यूचर में स्ट्रेंथ बन जाती है। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में ना अपनी वीकनेस को बहुत ज्यादा कमजोर ना समझे, ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी वीकनेस ही हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी घबराए ना, जिंदगी में ना हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। आपने वो गीत तो सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। जी हाँ, कल का क्या भरोसा है, बस जिंदगी में बढ़ते रहे और हमेशा खुश रहे। और इसी खुशनुमा में, यानी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो इसीलिए आप मेरी खुशी के साथ साथ यही गाने को एंजॉय कीजिए सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी में।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए इसी के साथ चलते हैं और अब बातचीत करते हैं कुछ खबरों की। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और तनाव को खत्म करने को लेकर जारी बातचीत में एक नया घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज़त्तबा खामेनेही ने ईरानी इनरिड यूरेनियम को लेकर एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि देश में मौजूदा समृद्ध यूरेनियम का भंडार ईरान में ही रहना चाहिए। रॉयटर्स ने दो वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का और शांति बहाल करने की कोशिशें और ज्यादा जटिल हो सकती है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। तो दोस्तों और मेरे प्यारे श्रोताओं, इसी फिल्मी और प्यारी सी वाइब्स के साथ अब मुझे आप दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे थे चांदनी का सफर यानी आपका अपना मॉर्निंग शो। याद रखिए, जिंदगी में थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी हंसी और थोड़ी पॉजिटिविटी जरूरी है। हैव अ ब्यूटीफुल डे, टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जॉर्जिया के अटलांटा में अचानक आई बाढ़, हाईवे पर फंसी कई गाड़ियां। जॉर्जिया के अटलांटा, ड्रुइड हिल्स और एमोरी में राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा अचानक आई बाढ़ की चेतावनी जारी रखी गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि बाढ़ की ये चेतावनी रात 11:15 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर बाढ़ के कई डराने वाले वीडियोस भी सामने आए, जिनमें पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई गाड़ियां भी सड़क पर फंसी हुई नजर आईं। ईरान युद्ध को लेकर फोन कॉल पर आपस में भिड़े ट्रंप नेतन्याहू, इजरायली पीएम बोले बड़ी भूल कर रहे हैं। ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर बातचीत के दौरान जबरदस्त बहस में फंस गए। ट्रंप जहां नई डील के साथ जंग रोकने के प्रयास में हैं, तो वहीं नेतन्याहू ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्यवाही चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक फोन पर तीखी और तनावपूर्ण बातचीत हुई। 60 दिन में नौकरी खोजो वरना अमेरिका छोड़े, H-1B वीजा धारक भारतीय ट्रक प्रोफेशनल्स को अल्टीमेटम। अमेरिका के टेक सेंटर में आई छटनी की नई लहर ने वहां रह रहे हजारों भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। जो लोग सालों से अमेरिका में काम कर रहे थे, घर खरीद चुके थे और अपने परिवार के साथ बस चुके थे, उनके लिए कंपनी से आया सिर्फ एक ईमेल सब कुछ बदल रहा है। मेटा, अमेजन और लिंक्डइन जैसी दिग्गज कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो रही हैं। भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी जाने का मतलब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि देश छोड़ने का काउंटडाउन शुरू होना है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। अभिषेक बैनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 31 जुलाई तक कार्यवाही पर रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही करने से रोक दिया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला चुनाव रैलियों के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में आया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस TMC नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करे। PM मोदी और मेलोडी केमिस्ट्री पर भारत में सियासी घमासान। PM नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हुई ट्रॉफी डिप्लोमेसी ने भारत में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। PM मोदी द्वारा मेलोनी को भारत की फेमस मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेर लिया है। लोकसभा में विपक्ष के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि देश जब गंभीर आर्थिक संकट और महराए से जूझ रहा है, तब PM मोदी विदेशों में रील बनाने और टॉफी बांटने में व्यस्त हैं। वहीं राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे कांग्रेस की मेड इन इंडिया उत्पादों और देश के बढ़ते वैश्विक कद से नफरत करार दिया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

ना बदला में

0: Pourquoi?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट

आहा नाचे नाचे कोई वहां आहा नाचे नाचे सारे हंसी आहा नाचे नाचे।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
0: हम को सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. Toh chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में, महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيزان من البرادران المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الله رب العزت کا بہت بڑا کرم اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا ہے और इसी के साथ साथ हज की मुबारक महीने भी शुरू हुए हैं और ये मुबारक महीना भी अल्लाह सुभान व तआला नसीब फरमा रहा है। इसलिए इसी के मुताबिक चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला दुनिया के गोशे गोशे मशरिक़ व मगरिब व शिमाल व जुनूब से जाने वाले हुज्जाज किराम के हजों को अल्लाह सुबहानहु व तआला अपनी शान करीमी से कबूल फरमाए, वहां की बरकतें सबको नसीब फरमाए। और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला इनके सदके और तुफेल में वहां की बरकतें और रहमतें हम सबको भी नसीब फरमा दें जो इस साल हज के लिए नहीं जा रहे हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला बड़े करम वाले हैं। दुआ हम कर रहे हैं कि परवरदिगार आदम वहां की बरकतें रहमतें हम सबको नसीब फरमा दें और अपने पाक घर की ज़ियारत से किसी को महरूम मत फरमा। और ये दौलत हर ईमान वाले को अल्लाह सुभान व तआला नसीब फरमा दे, इसकी दुआ करनी है। सरकारी दुआ आलम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन मुबारक को लेकर आए थी, मक्का मुअज़्ज़मा से आपने हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा में सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने लगे। सन 10 हिजरी में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हज की फर्जियत 9 हिजरी में हुई थी, 10 हिजरी में तन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। ये आपका आखिरी हज है, हज्जतुल विदा। सरकारी द्वारा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अपने हज में जाने के इरादे जाहिर फरमाए और दूर दूर तक लोगों को इसकी खबर हो गई कि ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और आप चाहते थे कि मुसलमानों की बड़ी तादाद इस हज में शरीक हो जाएं और सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके अपना हज अदा करें और दीन की बातें आपसे सुने और हज के अदा करने के तरीके भी आपसे मालूम कर लें। और इस सफर में आप जितनी भी हिदायत की बातें और जितनी भी दीन की बातें आप फरमाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले उन बातों को सुने और सुन करके दूसरों तक पहुंचाए। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इस हज में शरीक हो जाए। रिवायतों के मुताबिक सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलकादा की 24 तारीख को जुमा का दिन जुमा की नमाज के खुतबे में आपने हज की फजीलत हज की अहमियत को बयान फरमाया और दूसरे दिन शनिचर को सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़कर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी थी इनके साथ सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज का सफर शुरू किया। अब जोहर की नमाज के बाद शनिचर को जोहर की नमाज के बाद ये काफिला रवाना हुआ और ज़ुल्हुलैफा जहां से एहराम बांधना है ज़ुल्हुलैफा की मस्जिद में आप तशरीफ ले गए। वहां असर की नमाज पढ़ी, रात वहीं गुजारी और दूसरे दिन सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतवार के दिन एहराम बांधा और इसके बाद सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को लेकर के हज के लिए रवाना हुए हैं। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़िलहज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा आप पहुंचे, आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, हजरत अस्वद को इस्तेदाम के बोसा दिया और पूरा तवाफ आपने किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई, हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तादाद बढ़ती जाती थी। रिवायतों के मुताबिक शुरू में 40,000 का अंदाजा था लेकिन ये तादाद बढ़ते बढ़ते रिवायतों के मुताबिक मैदान अरफात में जब पहुंचे तो 1,30,000 के करीब का अंदाजा लगाया गया, 130,000 अल्लाह के बंदे हज के लिए पहुंच चुके थे कमोबेश। आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आपने सफा और मरवा की सही फरमाई। मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूं, सफा और मरवा की सही के 4 चक्कर पूरे करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ तो कुर्बानी के जानवर को मैं साथ ले आया हूं, इसलिए मैंने जो एहराम बांधा है वो उमरा और हज दोनों का एहराम है एक साथ। हज की 3 किस्में हैं, उलमाए किराम फरमाते हज की 3 किस्में हैं, अफराद किरान तमत्तो। अफराद के मुताबिक फरमाया गया कि एक आदमी हज के लिए रवाना हो तो एहराम बांधे तो सिर्फ ये नियत करे कि मुझे हज अदा करना है, उमरा शामिल ना हो, ये अफराद है, अफराद इसी को कहते हैं। किरान कि आदमी एहराम बांधते वक्त ये नियत कर ले कि मैं इसी एहराम के साथ उमरा भी अदा करूंगा और इसी एहराम के साथ हज भी अदा करूंगा, दोनों साथ में एक ही एहराम से दोनों अदा करना। तमत्तो हज करने वाला एहराम बांधते वक्त नियत करे कि मैं उमरा अदा करूंगा और उमरा के बाद उमरा के तमाम अरकान पूरे करने के बाद मैं अपना एहराम खोल दूंगा, सिर्फ उमरा की नियत की, और उसके बाद जब हज के दिन आए 8 ज़िलहज्जा तो उसने दूसरा एहराम बांधा हज के लिए, तो ये तमत्तो है। عام طور پر سہولت اور آسانی کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمتع میں سہولت ہے آسانی ہے, احرام کی پابندیوں کو پورا کرنے میں لوگوں کو سہولت پیش آتی ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کے جانور کو لے کر کے آیا ہوں, اور جو حضرات بھی قربانی کے جانور ساتھ میں لائے ہیں وہ اپنے احرام کو کھولے نہیں, بل عمرہ دونوں کی نیت کی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کے جانور کو لے کر کے آیا ہوں, اور جو حضرات بھی قربانی کے جانور ساتھ میں لائے ہیں وہ اپنے احرام کو کھولے نہیں, بلکہ اسی احرام کے ساتھ

काम को पूरा कर ले। बहरहाल ये मुख्तसर तशरी मैंने इसलिए की कि सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की कुछ कैफियत हमारे सामने आ जाए। बहरहाल सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तारीख को ज़िलहज्जा की 8 तारीख को मीना पहुंचे। वहां आपने ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा की और दूसरे दिन 9 तारीख को अरफात के मैदान में आप तशरीफ ले गए। हुज्जाज किराम सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने वाले हजारों लाखों मुसलमान आपके साथ अरफात के मैदान में पहुंचे। चंद जरूरी बात अर्ज करने के बाद मैं कुरान करीम की उस आयत को जिसको मैंने शुरू में तिलावत किया है उसी के मुताबिक चंद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूं। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कसवा पश्चवाद थे और मुसलमानों को दीन की बातें पहुंचा रहे थे, अल्लाह के अहकाम सुना रहे थे। इसी दरमियान में अर्श इलाही से पैगाम इलाही और आयात रब्बानी लेकर के हजरत जिब्राईल अलैहि सलातु व सलाम के जरिए ये आयतें आपके कल्ब मुबारक में डाली गई। कल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। इस आयत का नुजूल होना था, ये ऊंटनी जिस पर आप सवार थे वो बैठ गई और अपनी गर्दन जमीन पर फैला दी। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना आने लगा। अज़ात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब कभी भी कुरान करीम की आयतों का नुजूल होता, अगर आप सवार होते तो ऊंटनी बैठ जाती, अपनी गर्दन जमीन पर झुका देती और अगर आपका सर मुबारक अपनी किसी सहाबी की रान पर होता और आप आराम करते हो इसी हालत के अंदर वही नाजिल होती तो सहाबी रसूल फरमाते हैं इस कुरान करीम की आयत के नुजूल के वक्त जो है मेरे पांव की हड्डियां जैसे टूट रही हैं और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। अल्लाह का पाक कलाम है, इतनी बड़ी ताकत है। ऊंटनी बैठ जाती हैं, अपना सर झुका देती हैं। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नुजूल होता तो पसीना से आपकी पेशानी तर हो जाती। बहरहाल इस मुबारक आयत में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने खुशखबरी दी है। पैगाम इलाही आया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन मैंने अपना मुकद्दस दीन आपकी जात पर मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया, दीन मुकम्मल कर दिया मैंने। और जो नेमतें मुझे देनी थी, जो इनामात आपको देने थे, वो इनामात भी पूरे पूरे आपको दे दिए। और अब इस्लाम ही से मैं राजी रहूंगा। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। इस्लाम ही से मैं राजी रहूंगा, वो दीन जो इस्लाम के नाम से है इसी पर मैं राजी रहूंगा। और जो इस इस्लाम पर चलेगा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो मेरी रजामंदी हासिल कर देगा। ये आयत कुरान करीम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई तो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में बड़ी खुशी फैल गई कि जिस दीन की खातिर हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी थी, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हमारी जिंदगी में उस दीन को मुकम्मल कर दिया। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह का दीन हमारी जिंदगी में मुकम्मल हो गया। कयामत तक के लिए इस बात को बतला दिया गया ये अल्लाह का आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये पैगाम इलाही आखिरी पैगाम है। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब कोई नया नबी आने वाला नहीं, नई

0: आने वाली नहीं, नया पैगाम इलाही आने वाला नहीं। सारे इंसानों की निजात और फलाह सिर्फ इसी में है कि अल्लाह के इस दीन पर चले और उसकी अपनी जिंदगी में ले आए। हुज्जाज किराम को खुसूसियत के साथ कहा जाता है, इस मुबारक जगह पर हज्जतुल विदा में ये आयतें नाजिल हुई इस बात का अहद पैमान कर लें कि हम वापस जाकर के अल्लाह के दीन पर चलेंगे, इस दीन को के साथ मोहब्बत करेंगे और इसी दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ने बड़ा मुकम्मल दीन अता फरमाया है, बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। ये पैगाम है और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया हज्जतुल विदा में, बेनजीर और बेमिसाल खुतबा है। आपने इरशाद फरमाया इसमें, देखो आज के बाद तुम पर एक दूसरे का खून हराम है, कत्ल कताल हराम है, एक दूसरे का माल लूटना हराम है, एक दूसरे की इज्जत और आबरूजी से खेलना हराम है। देखो तुम आपस में एक दूसरे की गर्दनों को मत न मारना, एक दूसरे की जिंदगी से खेलना मत। ये मुख्तसर बातें मैं अर्ज करता हूं। देखो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो दीन मेरी जरिए भेजा है उस पर चलो, और वहीं पर आपने ये भी फरमाया मैं इस दुनिया से जाने ही वाला हूं, अनकरीब अपने खुदा की बारगाह में पहुंचने वाला हूं। मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जाता हूं, तरक तुफी गुम अमरीन किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जाता हूं, एक अल्लाह की पाक किताब कुरान करीम और एक मेरी सुन्नत, मेरे नूरानी अमाल। तरक तुफी गुम अमरीन किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को छोड़ के जाता हूं, मेरी सुन्नतों को छोड़ कर जाता हूं, मेरे अमाल को छोड़ करके जाता हूं। तुम इसको मजबूती से पकड़ लो, पकड़ लोगे तो कभी गुमराह न होंगे, राह हिदायत पर चलते रहोगे। बहरहाल अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नेमत अता फरमाई, फरमाया गया कि हज्जतुल विदा में मैदान अरफात में पहुंचने वाले कम से कम 100 मरतबा لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير पढ़े। क़िबला की तरफ रुख करके ज़ुहर की नमाज के बाद इनको 100 मरतबा पढ़े और 100 मरतबा قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد पढ़े। और फिर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, वो दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ा जाता है या कोई और भी दरूद शरीफ, और फिर दुआ मांगे। अरफात के मैदान में ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है, बड़ी बरकत वाला दिन होता है। अल्लाह ताला की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है और बख्शिश के फैसले किए जाते हैं। और जब सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा अकदस पर हाजिरी हो तो उलमा फरमाते हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर हाजिर होकर अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सैयदुल मुरसलीन, बड़ी मोहब्बत और शौक और शौक के साथ सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलाम अर्ज करें। उलमा एक उम्मत ये भी फरमाते हैं कि अगर हो सके तो सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठ के नहायती खुशू और खुशू के साथ 1000 मरतबा इन्ना अतैना कल कौसर वसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर पढ़ करके सरकारे दो आलम हजरत नबी करीम सलाम की मुबारक रूह को इसका सवाब पहुंचा दे तो अल्लाह के रसूल बड़े खुश होते हैं। दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और वहां की बरकतें और रहमतें हम सबको नसीब फरमा दे, और अल्लाह सुबहानहू व तआला अपने दीन से मोहब्बत नसीब फरमाए और इस दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमारे गुनाहों कोताहियों को माफ फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अभी आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे तक।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात।
1: और रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। अभी से लेकर 10 बजे तक हर सप्ते की तरह आज जुमा है, प्रोग्राम के बाद आपके लिए पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियां।

ये है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान, और हम आपको याद दिलाते हर जुमे के दिन, हर फ्राइडेज को 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुन सकते हैं आज जुमा है नामक प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए पेश करते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड के मौलाना बशीर अहमद दीवान को। फिलहाल कवाली, नज़म और हम्द को आगे बढ़ाते हुए

आज जुमा है, प्रोग्राम को हम यही छोड़ रहे हैं आपका साथ फिरोज खान। अगली बार तक के लिए हमारा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।